0: ताली ताक झुमी ताक ताली ताक झुमी ताक झाला आंगो ताक झुकी ताक ताली गेन ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी ता कोकू तारी गेटे ताली झम तारी ता झग तारी ता झन झाले कोकू तारी ता कोकू तारी गेटे झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ता झन ता झुम ता झन ता झम तारी झग तारी झन झाले कोकू ता झन ता झुम ता झन ता ताक धंग करू धम कर दे करू धम ताक धंग करू धम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

काटूंगा वही हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट लीला माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थीं यशोदा के पास कि यशोदा तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो, देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब की बातें मत सुनना, ये सब झूठ बोल रही हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

तो बस कन्हैया ने सोच लिया, अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तक दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता है इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया है, मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं।

हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि रागों की रचना हुई है समय के अनुसार, अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग हैं। यहां वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वरों में सुना रहा हूं। मेरा प्रयास है, शायद आपको लगे कि ये भोर है और ये सांझ है।

नहीं चला यह तर्क। दूसरा तर्क दिया, कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं, और ये कहां तुम टांग के रखती हो। और बोले

मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujjal Radio. Mail naar info@ujjala.nl. Ujjal Radio. Desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujjal Radio. Ujjala hi ujjala. Desh bhar mein. Haan. Har gaon mein. Har kona mein. Auto mein. Ghar mein. Sunai deta hai Ujjal Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए खाया है बिना कोटरावा तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujjala Radio. E-mail info@ujjala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujjala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवराजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवराजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

एंड गर्ल गर्ल गर्ल बन गई। यो यो हो है था यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर एंड सुखबीर, इन लोगों से आप सुने। एंड ये उजाला रेडियो है टॉक।

0: दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे
1: किसी से प्यार।
0: जुबिन नौटियाल की आवाज उजाला रेडियो एंड इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा तू देख ले उजाला.nl उजाला.nl।

समझा चुकी के आग हूँ मैं, न खेल मुझसे मोहब्बत के हक में नाग हूँ मैं।

खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।

आज का संगीत का सफर सुनने वालों यहीं तक, और आपसे जल्दी फिर हम मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। तू जाने है तो मौज से रहिए।

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

सुनने वालों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उजाला रेडियो का ये संगीत का सफर बहुत जल्दी आपके साथ हम जारी करेंगे।

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

सुना और बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा जी से आप सुने, फिल्म का नाम धूल का फूल और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, मोहम्मद रफी साहब अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

आप नाराज, खुदा खैर करे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म प्यार मोहब्बत का गीत, और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एक बार फिर आशा जी, और अब है शमशाद बेगम के साथ में।

और कजरे ने ले ली मेरी जान। आशा जी के साथ शमशाद बेगम से आप सुने फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर।

0: थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: गाने जो दिल को छू जाएं, उजाला रेडियो पर तू जाने है तो।

0: हर मूड हर मौसम हर वक्त का म्यूजिक सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: मुकेश जी की आवाज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भरा आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।
2: रुक

उसने कहा किसका है तू? मैंने कहा मौला तेरा। उसने कहा किसका है तू? मैंने कहा मौला तेरा। उसने कहा चाहता है क्या? मैंने कहा जलवा तेरा, जलवा।

उसने कहा ये तो बता शाखे शखावत गेसु है क्या। उसने कहा उसने कहा ये तो बता साखे सखावत गैसु है क्या। मैंने कहा वैलूल मुस्लिमीन वसम सहाय मुखड़ा तेरा मुखड़ा।

उसने कहा तौहीद पलक कब से हुआ रोशन बता। उसने कहा तौहीद पलक कब से हुआ रोशन बता। मैंने कहा मत बना जब से बजा डंका तेरा डंका

मैं हूं मोहम्मद मुस्तफा। आए उसने कहा पहचान लोग, मैं हूं मोहम्मद मुस्तफा। मैंने कहा कुर्बान हूं सल्ले अला सहदा तेरा, सहदा तेरा या

अब यहां से शुरू है उजाला रेडियो पर एक ऐसा प्रोग्राम जिसके सुनने के बाद आपका दिन और सुनहरी हो जाएंगे और साथ में आप भी और खुश हो जाएंगे।

उजाला रेडियो, आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

6:09 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये, मैं हूं रतन रामदुलारे पांडे। और आज मेरे प्यारे सुनने वालों, नए महीना जुलाई का पहला बुधवार है, पहला दिन भी है, 1 जुलाई साल 2026। आपका सेवा फिर एक बार करने चले आए हैं लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और फिर एक बार ये प्रोग्राम हम सजाएंगे आप सभी के लिए और आप सभी के साथ लाइफ एंड डायरा क्यू आर के स्टूडियो रोहतांग से। तो तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे सुनने वालों, आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप हैं, स्वागत करता हूं आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदा प्रणाम। नए महीना है और नए महीना का पहला दिन, तो मेरे प्यारे सुनोलो ये प्रोग्राम आज एक नए कलाकार का हम शुरुआत करेंगे और आने वाले कुछ हफ्ते, 4-5 हफ्ते के लिए इन्हीं का प्रोग्राम हम सजाएंगे बुधवार के रात्रि को। पिछले कुछ हफ्ते देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हमने सजाए हैं, काफी लोगों ने बेहद भी पसंद किए हैं, क्योंकि पुराने गाने जो है लोग हमेशा उनके साथ कुछ पुराने जो उनकी यादें होते हैं ना, उन्हें ये याद हो जाता है कि कौन सा फिल्म है, किस तरह से उन्हें जाकर देखे थे, और खास करके शायद सुरिनाम देश में। तो वो सब सारी यादें ताजा होते हैं पुराने गानों के साथ। आज जो कलाकार का प्रोग्राम हम शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, अनवर सरदार मालिक ऑफ ट्वेल्व अन्नू मलिक जी, जो एक महान म्यूजिक कंपोजर है, डायरेक्टर है, और गाने भी ये गाते हैं। इनके गाने भी जो इन्होंने गाए हैं जरूर से जरूर भी हम पेश करेंगे। तो इनका प्रोग्राम, बहुत सारे मूवीज के लिए इन्होंने अपना संगीत दी है और उन्हीं मूवीज से हमने नगमाएं चुन चुन कर आज का प्लेलिस्ट सजा रखा है, तो आप तक हम पेश करेंगे। तो वंस अगेन मेरे प्यारे सुनो रतन का प्यार भरा नमस्कार और आप अरसे मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक घंटे पर आप इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का मस्त समाचार, मौसम का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है। और मैं देखता हूँ, अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि 7 बजे के इश्तिहारों के बाद भी प्रोग्राम में उजाला रेडियो के जरिए थोड़ा सा मृत्यु समाचार है, मौत की खबरें हैं जो पुकारा जाएगा, या हिलास एन रोक वत बरिख्त फन ओवरलाइड ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेफ यूर हियर ऑफ यू आर उजाला रेडियो। और हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे से नोलो स्टूडियो में आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का नंबर है 020-363-0800 और आपके हर एक कामों काज के लिए फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी, इंफॉर्मेशन के लिए आप दफ्तर के दिन, दफ्तर के वक्त, दफ्तर के तार पर जरूर तार करें अब 020-409-0807 या तो लगातार 7 दिन 24 घंटे आप किसी भी वक्त किसी भी पल आप उजाला रेडियो को अगर जरूरत पड़े मेल कर सकते हैं। आप मेल करें info@ujala.nl। ले चलते आज का पहला ओपनिंग सिलेक्शन की ओर, एक गीत आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ और जिसका अफकोर्स संगीतकार अन्नू मलिक जी, किशोर कुमार गीत का गाएंगे। और गीत हम निकाल रहे हैं 1984 मेघतिन फिरन तख्तख का फिल्म आसमां से हम नगमा निकाल रहे हैं कि बन के नजर दिल की जुबां कहने लगी एक दास्ता। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर विद द हिट्स, ब्यूटीफुल हिट्स ऑफ अन्नू मलिक जी।

बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी है कोई दास्तां। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज का ओपनिंग सिलेक्शन आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ गीत और जिसका संगीतकार अनु मलिक जी। फिल्म का नाम आसमान और ये फिल्म नीहतिन फिरन तख्तक का है 1984। फिल्म का डायरेक्टर टीटो या कहिए प्रोड्यूसर टीटो, डायरेक्टर टोनी, टीटो टोनी और राजीव कपूर, वो जो छोटा भाई है रणधीर कपूर और ऋषि कपूर का छोटा भाई, इन्होंने ये मूवी में काम किया है टीना मुनीम के साथ, दिव्या राणा, द ग्रेट माला सिन्हा जी, अरुण गोविल, रुपेश कुमार, रजनी शर्मा और सरिका। 10 मिनट बाकी हैं सरे 6 बजने में। मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये, मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे, फिर एक बार स्वागत करता हूं। शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं आज इस पहला दिन, नए महीने का पहला 1 जुलाई। और बैक टू द फ्यूचर हमने आराम की, पहला गीत आप सुन चुके हैं। प्रणाम आज पहला और कुछ हफ्तों के लिए और भी बनाएंगे। अनु मलिक जी द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर कंपोजर, इनका प्रोग्राम, इनकी म्यूजिक और इनका गाया हुआ गीत आप तक हम पेश करेंगे। अगले मूवी मेरे प्यारे सिनेमा, फिल्म का नाम है मैं हूं ना और ये फिल्म 2004 का एक फिल्म है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ हम निकालेंगे, मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साथ और संगीत पर श्रेया घोषाल और सोनू निगम। ये नगमा

जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना। श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य जी की आवाजें, जावेद अख्तर जी इनका लिखा हुआ ये डांस सॉन्ग, अनु मलिक की साज और संगीत पर दोनों ने मिलकर गाए। मैं हूं ना फिल्म का नाम 2004 का, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर गौरी खान और शाहरुख खान है, डायरेक्टर फारा खान और शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सैयद खान, अमृता राव, सुनील शेट्टी, किरण खैर, बिंदु जी, सतीश शाह, बोमन ईरानी, राखी सावन, कबीर बेदी, इन सभी का एक फिल्म। दिस इज यू आर बैक टू द फ्यूचर, आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे सुनो वालों, एंड इट इज बाय द प्रख्तक वेयर, बहुत खूबसूरत मौसम है, उतनी गर्म नहीं है, कुछ हवा भी है और आप भरपूर मजा लें। एक मूवी का टाइटल सॉन्ग ये वेल है जो हम पेश करने जा रहे हैं, बड़े अनजान साहब जी का लिखा हुआ गीत और शब्बीर कुमार, बेबी मुन्नी जी की आवाजें, अनु मलिक की म्यूजिक, प्यार के दो पल। ये फिल्म 1986 का है, निहतिन सेसन तख्तक, शब्बीर कुमार और बेबी मुन्नी, पेश करता हूं प्यार के दो पल, कहीं खो ना जाए, मिलके जुड़ा हम कहीं हो ना जाए।

झाड़ के दो पल कहीं खो ना जाएं और मिल के जुड़ा हम हो ना जाएं। शब्बीर कुमार और बेबी मुन्नी की आवाजें, अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये गीत और जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज। पहला अनु मलिक जी की म्यूजिक, प्यार के दो पल 1986 का फिल्म है जिसका डायरेक्टर राजीव मेहरा, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा, सिंपल कपाड़िया, बिंदु, अमृता पाल, सत्यन कपूर, कृष्ण धवन, सुभा खोटे, ललिता पावर, टिक्कू तालजानिया और जगदीप साहब जी का एक फिल्म है।

उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और अनु मलिक जी इनकी पॉपुलर हिट्स मूवी से निकाल निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। हम आपको ले चलते हैं अब की बार फिल्म 2004 का। फिल्म का नाम है फिदा। फिदा का एक नगमा, एक रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सिनेमा समीर का लिखा हुआ, जो मिलकर गाएंगे उदित नारायण और अलका याग्निक। इन दोनों की खूबसूरत आवाजों में ये गीत समीर का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है अनु मलिक। दिल मेरे ना और इंतजार कर, गीत का बोल पेश करता हूं हियर ऑन यू आर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर,

दिल मेरे ना और इंतजार कर, इश्क है तो इश्क का इजहार कर। खूबसूरत प्यार भरा गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ मिलकर गीत गाए हैं अन्नु मल्लिक के साथ और संगीत पर उदित नारायण और अलका याग्निक। फिल्म का नाम फिदा और ये फिल्म 2004 का है। कैम घोष जी ने डायरेक्ट किया है मेरे प्यारे सुनने वालों एक फिल्म और जिन पर गीत भी पिक्चराइज किया गया है, शहीद कपूर करीना कपूर पर। इनके अलावा किम शर्मा, फरदीन खान, विजयू होते, दिनेश हिंगू, इन सभी ने ये मूवी में भी काम किया है। मेरे प्यारे सुनो लो, आपको मालूम रहे कि हम धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं 7 बजे की ओर। 7 बजे के इश्तिहारों के बाद अफसोस के साथ थोड़ा सा मृत्यु समाचार, मौत की खबरें हैं जो उजाला रेडियो के जरिए भी पुकारा जाएगा। ना सेफ यूर द कमर्शियल ब्रेक फन सेफ यूर बरिख्त फन ओवरलाइड हीर ऑफ यू आर। अब की बार गीत मेरे प्यारी सुनो वालो एक और रोमांटिक सॉन्ग जो हसरत जयपुरी जी ने लिखा। हसरत जयपुरी जी, इनका लिखा हुआ गीत मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक जी, हाँ जी, उनकी आवाज में और उनके ही म्यूजिक पर वो गीत गाएंगे और वो भी मुन्नी बोरा जी के साथ। दादागिरी फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, 1987 का फिल्म दादागिरी से हम निकालेंगे। खूबसूरत गीत है, काफी बार हम चला चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि अन्नू मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं तो ये गीत ये प्रोग्राम में भी शामिल होना चाहिए। जो मुस्कुराहट मुझे दे रही हो वो मुस्कुराहट किसी और को ना देना।

क्यों मुस्कुराहट मुझे दे रही हो? वो मुस्कुराहट किसी और को ना देना, और जिन नजरों से मुझे तू देखती हो उन नजरों से किसी और को ना देखना। अनु मलिक जी की आवाज मेरे प्यारे सुनवालों, और साथ दे रहे थे मुन्नी बोरा, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए, और वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर। 1987 निगतिन सेफ नन तख्तख का फिल्म दादा गिरी से हमने नगमा को निकाले। दादा गिरी एक फिल्म है जिसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दीपक शिव डसानी, धर्मेंद्र गोविंदा, रति अग्निहोत्री पद्मिनी कोल्हापुर, अमरीश पुरी, राकेश बेरी, सुधीर दलवी और शशिकला का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोलो, एक और आखिरी गीत हम पेश करने जा रहे हैं। इस गीत के बाद 7 बजे के ब्रेक होंगे, और ब्रेक के बाद भी आप सुनेंगे जैसे मैंने कहा मृत्यु समाचार, मौत की खबरें। तमाम सूचनाओं के बाद 13 ओवर सेफ फिर सेवा में हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। मैं खिलाड़ी तू अनारी से 2 नगमाएं सुनाऊंगा आप सभी को, पहला ब्रेक से पहले और दूसरा ब्रेक के उस पार। राहत इंदौरी इनका लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनो वालों। राहत इंदौरी अनु मलिक की साज और संगीत पर कुमार सानू और अलका याग्निक मिलकर गीत गाएंगे, और ब्रेक के उस पार कौन सा गीत होंगे बस आप सुनते ही रहना, सुनते ही जाना। फिलहाल तो ब्रेक से पहले ये नगमा।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 55 साल की आयु में 55 और माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुत का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह की मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 55 साल के आयु में 55 माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुत का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह की मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदा खानस्तांद द्री उर किए जाएंगे क्रेमाटोरियम दालवेक फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओफर फैक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार सुल्तान सिंह और परिवार जालिम सिंह के दुख में शामिल है।

चूरा के दिल मेरा घुड़िया चली। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें। मेरे प्यारे सुनने वालों, रानी मलिक का लिखा हुआ ये अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, और जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं अन्नू मलिक जी संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, ब्रेक से पहले गीत जुबां खामोश होती है, ये फिल्म से भी हमने निकाले, जो राहत इंदौरी जी ने लिखा और जो मिलकर गाए हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। ये फिल्म 1994 का है। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और समीर मलकन जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, शक्ति कपूर, कादर खान, जॉनी लेवर, बीना, मुकेश खन्ना, रवीना टंडन, गोगा कपूर, इन सभी ने जो काम किए हैं। आठ मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सर सात बजने में, आठ मिनट फोर ओ क्लॉक फन हालफाख। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार पेश कर रहा हूं आज इस हसीन हसीन पहला जुलाई, नए महीना का पहला बुधवार, पहला दिन 1 जुलाई को पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और आज पहला प्रोग्राम भी है अन्नू मलिक जी का। अन्नू मलिक जो बहुत सारे खूबसूरत मूवीज का संगीतकार है। मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपने सुना पिछले घंटे में गीत भी खूबसूरत इन्होंने गाए हैं। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 0 3 3 9 9 9 स्टूडियो में। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आई थम सल्फेन, आइलिन जी आई थार्लेम, आईफी जहांगीर आई अम्स्टरडम, और मार्सब्रुक का हेयर एंड्रू और चित्रा जी को हम कहेंगे धन्यवाद आप सभी के ऐप के लिए। हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम मुन्ना भाई MBBS, और ये फिल्म 2003 का है। ट्वीटी एक गीत, ये भी राहत इंदौरी जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक सॉन्ग है, जो मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक के साज और संगीत पर विनोद राठौर और श्रेया घोषाल। छन छन पेश करता हूँ हीर ऑन योर हार्ट।

छन छन मन गाए क्यों, श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाजें, राहत इंदौड़ी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग मिलकर दोनों ने गाए हैं। अन्नू मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, अन्नू मलिक जी इनके साज और संगीत पर, मुन्ना भाई MBBS 2003 का फिल्म जिसका डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, संजय दत्त हमारे प्रिय श्री सुनील दत्त साहब जी, और मैं देखता हूं और कौन, अर्शद वर्सी, ग्रेसी सिंह, रोहनी हटनगड़ी, बोमन ईरानी, जिमी शुरगिल, इन सभी का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों। अन्नु मलिक जी का प्रोग्राम आज इस पहला बुधवार 1 जुलाई को पेश कर रहा हूं। बहुत सारे खूबसूरत पॉपुलर सॉन्ग्स, द 90s, लेट 80s, द 90s और मिलेनियम के दौरान बहुत सारे मूवीज के लिए इन्होंने अपना संगीत दिए है और कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स इन्होंने भी गाए हैं। तो इनका प्रोग्राम आज हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनवालों, और एक पॉपुलर सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं। एक गीत जो हसरत जयपुरी जी ने लिखा, ऑफ कोर्स अन्नू मलिक जी संगीतकार हैं, कुमार सानू गीत गाएंगे, फिल्म का नाम माँ, और माँ ये जो है 1991 का निकाल रहा हूँ वो डर भरे गीत की, आईने के सौ टुकड़े करके हमने देखे हैं।

आईने के साथ टुकड़े करके हमने तो देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और सांव में भी अकेले हैं। हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये डर भरा गीत अन्नू मलिक के साज और संगीत पर कुमार सानू ने गीत गाकर सुनाए हैं मेरे प्यारे सुनवानों। 1991 नेहती नई नई का फिल्म माँ से हमने नगमा निकाले हैं। अजय और प्रशांत फिल्म का जो डायरेक्टर है अजय केशव और प्रशांत नंदा, जितेंद्र जया प्रधा, अरुणा रानी, शक्ति कपूर, कादर खान, बिरबल, गुलशन ग्रोवर, विजू होते, सुषमा शेत का एक फिल्म उजाला रेडियो है ये। और 10 मिनट मैं देख रहा हूँ गुजर चुके हैं 7:30 और एक रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलेंगे अब की बार। गीत देव खोली जी का लिखा हुआ है मेरे प्यारे सुनने वालों, देव खोली जी इनका लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग। शान की आवाज में आप सुनेंगे गीत, वो भी अनु मलिक के साज और संगीत पर, कि और मोहब्बत है, मैं प्रेम की दीवानी हूं फिल्म का नाम, और ये जो फिल्म है 2003 का है। ट्वीट संतेंद्री शान को पेश करता हूं।

तुम ही तुम मेरे पास हो, फिर भी क्यों उदास हो, दिल ये क्यों धड़कने लगे, आज मैं हूं और तुम हो और मोहब्बत है। शान की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, देवखोली जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग अनु मलिक के साज और संगीत पर शान जी ने गीत को गाए हैं। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। फिल्म है 2003 का मूवी, डायरेक्टर सूरज भरतिया। हाँ जी, सूरज भरतिया, मूल का नाम और भरतिया, हाँ ऐसे। ऋतिक रोशन, करीना कपूर और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, अभिषेक बच्चन ने काम किया है। इनके अलावा पंकज कपूर भी है मूवी में, सुबह खोते, फरीदा जल्लाल, जवेद जाफरी, रीमा लागू, जॉनी लेवर और कौन है, और कौन है, याद रस के निकली थी। प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, रोहतक का रोहिणी कल्लू जी, डंकी वाला आपके ऐप के लिए, प्रभा जी भी अमस्टरडम सेंट्रम से आपके ऐप आए हैं, जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ, उजाला रेडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और डंकी वेल हम कहेंगे भी मिका अदनाख, डंकी वेल मिका आपके ऐप के लिए। अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम आज पेश कर रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, पहला इनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और कुछ चार पांच इनके प्रोग्राम हम सजाने वाले हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत नगमाएं इन्होंने अपना संगीत दी है। तो हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में पेश करता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं दो और नगमाएं चलाने का, वहां सिन हुफेर वकोम। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर, जो हम निकालेंगे फिल्म नागमनी से। नागमनी फिल्म 1991 का है, नहीं हती नहीं न नहीं हंत

जाएंगे और वो भी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में। अनु मलिक संगीतकार, पीछे पीछे आजा मेरी चाल, देख जाए मेरा लौंग बाजार।

अनुराधा पौडवाल, मेरे प्यारे सुन वालो, पीछे पीछे आजा मेरी चाल दिख जाए, ओ मेरे लौंग वाजा। संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गीत अनुराधा जी ने गाकर सुनाए हैं, अनु मल्लिक के साथ और संगीत पर। और ये था फिल्म नागमणि का एक नगमा, नागमणि 1991 का फिल्म है। नीखंती नहीं ननीखंतक, मेरे प्यारे सुन वालो। विक्टर मेनन जी या विकास मेनन होना चाहिए, विकास मेनन, उसे विक बुलाया जा रहा है। इनका डायरेक्ट क्या हुआ मूवी, सुमित सहगल, शिकवा स्वरूप, किरण कुमार, अरुणा रानी का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, इस घंटे का आखिरी गीत पेश करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक 8 बजे का उसके ओर बढ़ चलेंगे। और ब्रेक के उस पार मेरा ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्सा पेश करने जाएंगे। और आखिरी हिस्सा में आप सभी को भी हम बताएंगे कि हम किन किन दिनों प्रोग्राम सजाएंगे, बनाएंगे द कोमिंग वीक, ठीक है। फिल्म जोश जो 2000 का एक फिल्म है, द्वी रजन फिल्म जोश, ये फिल्म का एक नगमा रोमांटिक सॉन्ग समीर का लिखा हुआ अभिजीत की आवाज में आप सुनने को जाएंगे, अनु मल्लिक की साज और संगीत पर। एक फिल्म जो मंजूर खान ने डायरेक्ट किया है, मेरे प्यारे सुनने वालों, और जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह ने काम किया है, मेरे ख्यालों की मलिका। इस गीत के बाद ब्रेक, ब्रेक के उस पार जरूर से जरूर फिर आप सभी से हम मिलेंगे।

दिल डिंग डोंग डिंग बोले मेरे प्यारे सुनने वालों के और सुनिधि चौहान की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी अनु मलिक की साज और संगीत पर। कुछ तो है फिल्म का नाम, कुछ तो है 2003 ट्विटर सत्येंद्री का फिल्म, इकता कपूर और शोभा कपूर, माँ और बेटी प्रोड्यूसर, और फिल्म का डायरेक्टर जो है अनुराग बाजू और अनिल कुमार। इकता जी और शोभा जी ने अपने भाई और बेटे को फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। तुषार कपूर और धर्म जी और हेमा मालिनी का बेटी ईशा देओल, इन दोनों का एक फिल्म। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनोलो, मैं देखता हूँ कि 14 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर। आपको ये इतला दे मेरे प्यारे सुनोलो कि ये प्रोग्राम जो है बैक टू द फ्यूचर हम सजा रहे हैं आज और आने वाले 3 हफ्ते, ऑफ द 8 जुली 15 जुली 20 जुली, तो ये 4 जो बुधवार है, वैसे तो इस महीने का 5 बुधवार है और 5 गुरुवार है, लेकिन 4 वोंसदाग को वंदाग मेगेटेल्ड प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर हम सजाएंगे ये महीना। दिस इज बैनर नोख ना वंदाग नोख 3 वीक, और कल भी हम प्रोग्राम आप सभी के खिदमत में पेश करेंगे। प्रोग्राम दिल की आवाज कल जो 2 तारीख है जुलाई और इस महीना का पहला बृहस्पतिवार गुरुवार, तो प्रोग्राम पेश करेंगे। और आने वाले, उसके बाद आने वाले जो और 3 हफ्ते हैं, 9, 16 और 23 जुलाई को पेश करेंगे ये प्रोग्राम दिल की आवाज। और रहे सैटरडे नाइट फीवर का, तो मेरे प्यारे सुनो वालों, आने वाले शनिवार 4 तारीख को पेश करेंगे, आने वाले 4 तारीख को पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और फिर उसके बाद सैटरडे नाइट फीवर मजबूरन हम नहीं पेश कर पाएंगे, एंड दैट हाउ पास दून मुते कीव स्पीकर 11 नीट 18 नीट 25 नीट 1 augustus niet, 8 augustus kan ik ook niet. To 15 augustus. Dat is na 6 weken. 4 Saturday Night Fever ko hum pesh kar payenge. Dus aane wale shanivar bharpoor aap mera saath denge. Kyunki shanivar ko aane wale phir 5-6 hafte aap sabhi ke seva mein hum nahi hazir rahenge lekar program Saturday Night Fever. Maar voorlopig ben ik er deze week elke dag en vanaf volgende week 3 weken lang alleen maar op de woensdag en op de donderdag. Ik romantic song mere pyare suno walo. Aap ke seva mein hum pesh karne jayenge. Bahut sare log Suriname se aaye hue hain, yahan rehte hain aur kafi baar jaate hain apna desh. Unme se ek main bhi hoon. अपने देश तो अपना प्रिय है, तो हम हमेशा जाते हैं। और मुझे मालूम है कि ये फिल्म जिसका नाम है राधा का संगम, नेहतीन त्वे नेहत का फिल्म है 1992 का। दपारो जो हमारे थिएटर है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मूवी सूरीनामे में हमने देखे हैं, तो दपारो में आखिरी मूवी मैंने ये फिल्म को देखा, राधा का संगम। और मुझे ये भी मालूम पड़ता है कि मेरे साथ मेरा भैया था सारू भैया, और आज उनका जन्मदिन है, हैज 75 यार खोर्ड सी कौन सा याद एक गीत के साथ जोड़े हुए हैं, और वो याद मुझे कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। हारी पतन दिन ऑफ स्टेट इन सूरीनाम वो हारी पतंजी, आज उनका जन्मदिन है 75 यार।
तू मेरे साथ है, अनवर सैन दीदाख मैं राधा का संगम, हम गए थे भी पीछे जहां से फिल्म, एह वो रोल से त्राय हो वा हम सभी ने देखे हैं और बातचीत हुआ है वहां नतुलक है वो नतुलक ओप उनमें डाता बालकोन खसीत लौशे है खूबसूरत मूवी से राधा का संगम से हम निकाल रहे हैं एक गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग अनु मलिक संगीतकार शब्बीर कुमार और लता जी। वैसे एक बात और कहूँ ये फिल्म हमने देखे और जब भी जाते थे फिल्म देखा किया करते थे द पारल में एन्ना दट वॉज इन सेसन ही हंत फिल्म तो यही हंत के है लेकिन सेसन ही हंत में हमने देखे थे ये फिल्म द पारल में और नतुलक हैपिक दी फिल्म हीर नीलंद खसीन मदार या वास ओक सोर्ट फ्रॉम बैक टू द फ्यूचर आवर फिल्म। उसके बाद हमने जब नेहन नेहत में गया तो मेरे प्यारे सुनने वालों सैसे नेहत सीर नेहत में बे रहा अख्त नेहत में तब द पारल खिंग खिंग फिल्म में हदराए ए नेहन नेहत हील माला नहीं मेर। पेश करता हूँ गीत शब्बीर कुमार लता जी का ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा।

आधा। शब्बीर कुमार और लता जी की आवाजें मेरे प्यारी सुनने वालों, रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, और वो भी अनु मलिक जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज पहली बार। संगीतकार मेरे प्यारे सुनने वालों, राधा का संगम एक फिल्म 1992 का है, निहत कीर्ति कुमार का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, और गी जो पिक्चराइज किया गया था ये मूवी में गोविंदा और जूही चावला पर। और ये गीत जब भी मैं सुनता हूँ वो ले जाते हैं मुझे पारल की ओर, निहत इंसेशन निहत, जहाँ मैंने फिल्म को देखे थे और बैक स्टेज भी गए थे जहाँ से फिल्म ड्राई हुए हैं, बातचीत भी वहाँ हुए हैं, और कुछ बातें पुराने भी वहाँ हम लोगों ने मिलकर बातें हैं। और मेरे साथ था जिनका जन्मदिन है हमारे बड़े भैया जो सुरिनाम में रहते हैं, हरी पटन पता नहीं आप सुन रहे होंगे या नहीं, लेकिन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बधाइयां शुभकामनाएं। ये था मेरी आखिरी मूवी सुरिनाम में द पारल में। मेरे प्यारे सुनो, आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है फिजा, और फिजा 2000 का है, निक्स नीहन तीन का फिल्म है, 2000 का मूवी, गुलजार साहब जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग जो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे। गीत उदित नारायण और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे, और संगीतकार है अनु मलिक। आजा माहिया, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है ये भी मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारी फेवरेट सॉन्ग की लिस्ट में ये गीत भी शामिल है।

या आ जा माहिया। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, आजा माहिया आजा माहिया, आ चूम लूं तेरे हाथों को, आज सजदा करूं तेरे बालों को, सुबह की मेहंदी झलक रही है। गुलजार साहब जी का लिखा हुआ ये फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी सॉन्ग और अपनी खूबसूरत आवाजों में मिलकर गीत गाए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। अनु मलिक की साज और संगीत पर फिल्म का नाम विजा, और विजा जो है 2000 का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों, खालिद मोहम्मद जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें जया बच्चन, करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन, मनोज बजपाई, नेहा, सुष्मिता सेन, ईशा कुपिकर, आशा सखदेव, जॉनी लेवर, इन सभी ने जो काम किया है। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनो, धीरे धीरे मेरा ये जो प्रोग्राम का वक्त है निकला जा रहा है। इतनी सारी गाने और है और इतनी कम वक्त, लेकिन क्या करूं, हम आज प्रोग्राम सजा रहा है और कल रात्रि को आप सभी के खिदमत में फिर हम हाजिर रहेंगे। मोरखना फन फन अख तुत अलफ जो हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज हियर ऑन यू आर लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। 8 मिनट गुजर चुके हैं सरे 8 बजकर और फिल्म दरार की ओर आपको ले चलेंगे। ये फिल्म 1993 का है, निहत इंद्रिय निहत, राहत इंदौरी जी का लिखा हुआ गीत, मिलकर गीत गाएंगे द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक, अनु मलिक ऑफ कोर्स इनके साज और संगीत पर। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी रास्ता, तूने इसरी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो भी अलमेर शहर में। थैंक यू वेल तूनी फॉर योर एपी एंजॉय।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा रास्ता, जन्मों से संग जीना है, अब दुनिया से क्या वास्ता, तेरे मेरे बीच अब आए ना जमाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, रहत अंडोड़ी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए, और अनु मलिक की साज और संगीत पर ऑफ कोर्स। दरार फिल्म का नाम, दरार 1993 का फिल्म है, नेहत इंद्रिय, नेहत अब्बास और मुस्तान बर्मा वाला, इन सभी ने डायरेक्ट किया है ये फिल्म, जिसमें ऋषि कपूर, जूही चावला, अरबाज खान, जॉनी लेवर, सुषमा सेठ, दिनेश हिंगू, रसा खान, टिक्कू तलजानिया, इन सभी ने काम किया है। हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए मेरे प्यारे से नॉलो www.pintuchala.nl, तमाम इंफॉर्मेशन वहां आपको मिलेंगे। ईमेल, तार का नंबर आसानी से आपको वहां मिलेंगे। जस्ट चेक इट आउट। फिल्म टक्कड़ की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे से नॉलो, 1995 का फिल्म, फिल्म टक्कर से अगले गीत निकालेंगे। माया गोविंद का लिखा हुआ गीत, माया गोविंद इनका लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग, अभिजीत और अलका याग्निक जो मिलकर गाएंगे, पेश करने जा रहा हूं कि आंखों में बसे हो तुम, पेश करता हूं।

Kiki, dat gaat niet goed met de Perez en Olaf. Het is live, toe jane toch? Ab hem na jane koontje, prem, van horen hè. Bankardia, ik ga het ook niet meer even uitzoeken voor vandaag. Kyunki wakt nikla ja raha hai aur main dekh raha hoon ki wakt kuch aise hai ki main aaj ke liye aakhri geet aap tak pesh kar sakunga. To us aakhri geet ki aur hum aapko le chalenge mere pyare sunne walon aur aakhri geet jo hai ek nagma jo Kumar Sanu aur Sadhana Sargam milkar gayenge. Devkholi ji ka likha hua mere pyare sunne walon, देवखोली जी का लिखा हुआ गीत और अनु मलिक ऑफ कोर्स जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं संगीतकार. फिल्म का नाम खिलाड़ियों का खिलाड़ी. बाप रे दादा. हाँ जी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी एन फिल्म है 1996 जो उमेश मेहरा जी ने डायरेक्ट किया है. अक्षय कुमार, रवीना टंडन, रेखा का फिल्म. मेरे प्यारे सुनो, इस गीत के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे. आप सभी से हम कल मिलेंगे, कल रात्रि को 8 बजे से 11 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम दिल की आवाज. आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, वेल, शुक्रिया. रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे. सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज. टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

आ गई है तो फिल्म आरज़ू का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अगला गीत सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल से आप सुनिए।

कपा था। अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमकारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।